0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबेद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। शिराजी साहब, जापान में कल बुजुर्गों की ताजीम का दिन है।
1: हाँ जी, मैंने सुना है। यहाँ सन 2003 से हर साल सितंबर के तीसरे पीर को बुजुर्गों का दिन मनाया जाता है, उन्हें तोहफे भी दिए जाते हैं।
0: ये है योमे ताजीमे बुजुर्गान, जिसे जापानी जुबान में केरोनोही कहा जाता है। सामिन, दरअसल जापान में बुजुर्गों को ताजीम देने के लिए कोई 60 साल पहले इस दिन को कौमी तातील करार दिया गया था।
1: ये तो पता चल गया, लेकिन आप लोग ये बताएं ना कि आप दोनों घर में इसे कैसे मनाती हैं?
3: नहीं, मेरी अम्मी ने मना किया है घर की बात बाहर नहीं करनी।
1: तो अम्मी के लिए कोई तोहफा ले जाएं?
3: कहा ना, बाहर की बात अंदर की बात बाहर नहीं करनी।
0: अच्छा, ज्यादातर जापान में ज्यादातर बुजुर्गों को उनके कमाऊ बेटे बेटियां कोई ना कोई तोहफा देते हैं।
3: जी बिल्कुल, और जापान में उमूमी रवाज ये है कि बच्चे माँ बाप के साथ खाना खाते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं।
0: और उस दिन से पहले कई स्टोर केरोनोही कॉर्नर मखसूस कर देते हैं, जहाँ बुजुर्गों के इस्तेमाल के लिए चीजें, मसाज चेयर और घरेलू बरकी आलात वगैरह होते हैं।
1: अच्छा, तो अब मुझे आप दोनों के लिए ऐसा कोई तोहफा देना शायद पड़ेगा।
0: फिर सारे पैसे जमा करें। वैसे एक नया और आसान रिवाज भी सुन ले। मेरी एक जापानी दोस्त ने बताया कि आजकल कई बच्चे एआई के साथ बुजुर्गों के दिन के ग्रीटिंग कार्ड्स बना लेते हैं।
3: अच्छा, साले नौ या ईद मुबारक जैसा, लेकिन इस कार्ड पर किसी तस्वीर, कैसी तस्वीर बनाई जाती होगी? ईद कार्डों पर तो हिलाले ईद वगैरह होता है।
0: अरे, केरोनोही कार्ड्स पर खिजा के फूल, कोहे फूजी जैसे डिजाइन होते हैं। कोई एक खास वजह या कोई खास डिजाइन नहीं है, और जिस तरह कोई खास डिजाइन नहीं है, इसी तरह बुजुर्गी की भी कोई वाजे हजबंदी नहीं। कुछ लोग इसे दादा दादी नाना नानी का दिन समझते हैं, और कुछ का ख्याल है कि 60 या 70 साल से कहीं ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है।
1: आप ये ना कहिएगा कि अभी हमारी उम्र ही क्या है।
3: बिल्कुल ऐसा कहें के नहीं सोचते हैं भाई। भाई, हमारे अमले की रुकन खाने को बिस्मा कहती हैं कि इस साल बुजुर्गों के लिए एहतराम का दिन कुछ खास है, क्योंकि 21 सितंबर को बुजुर्गों की ताजीम के दिन और 23 सितंबर को खिजा के एतदाले शबरोज की तातील है।
0: हाँ, वो दिन जब दिन और रात का वक्त बराबर हो जाता है। वैसे एक बात है कि 22 सितंबर को भी, 21 और 23 के दरमियान 22 सितंबर को भी हुकूमत ने छुट्टी दे दी है। उसकी वजह यह है कि जापान में अगर दो कौमी तातीलात, वीकेंड की नहीं मैं बात कर रही, दो कौमी तातीलात के दरमियान एक खाली दिन आता हो तो उस दिन भी छुट्टी होती है।
1: अच्छा, इसीलिए इस तवील तातील के लिए यहाँ लोग बहुत पुरजोश हैं।
0: हाँ, क्योंकि हफ्ते इतवार को अगर आप काम नहीं करते तो 19 से 23 सितंबर तक 5 दिन की छुट्टी है।
3: अच्छा, बिस्मा बताती हैं कि आजकल जापान में लोग 5 रोजा छुट्टियों के मंसूबों के बारे में बहुत बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग ईद की छुट्टियों के बारे में करते हैं।
0: जी जी जी,
1: चलिए जी, अब सामीन के पैगाम देख लेते हैं।
0: अरे, छुट्टियों के जिक्र से इतनी खुशी हो रही थी। जी, सामीन के पैगाम का आपने जिक्र किया, तो पैगाम है सिंध पाकिस्तान से हक नवाज टग्गर साहब का। लिखते हैं, प्रोग्राम दीवान खाना मेरे जैसा बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, साथ ही उन्होंने गुलाब के फूलों का और दिल का एमोजी भेजा है।
1: अच्छा, वैसे दो फूल और एक दिल, कुछ समझ नहीं आई।
3: क्यों नहीं समझ आई भाई? देखें, एक दिल आपके लिए, दो फूल, एक मेरा, एक वसीमा का।
1: कामयामा साहब,
0: हक नवाज साहब, आइंदा हमारे प्रोड्यूसर कामयामा साहब और उनकी मुआवन का भी फूल जरूर भेजिएगा।
1: हक नवाज टगर साहब, पैगाम का और हमारी महफिल में रौनक लगाने का बेहद शुक्रिया। वाकई बिल्कुल आप जैसे खूबसूरत सामे और वैसा ही आपका प्रोग्राम।
3: उम्मीद है आइंदा मजीद तफसीली ईमेल लिखेंगे और मजीद रौनक लगाएंगे। आप जैसे सब सामईन के लिए पैगाम है कि राब्ते इस्तवार रखें, हमें फूल बेचते रहें, हम उन्हें जमा करके बड़ा سا گلدستہ بنا لیں گے۔
0: واہ، پھولوں کے ذکر سے اسٹوڈیو میں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ پھولوں کا ذکر ہو گیا اور اب باری آ گئی موسیقی کی۔
3: جی، آج وسیمہ کے دن، میرا مطلب ہے بزرگوں کے دن کی مناسبت سے گیت سنوائیں گے۔
1: جب آپ ایک دوسرے پر ایسے کمنٹ دیتی ہیں تو بہت اچھا ہے۔
0: تو میری بزرگ، میں تیری بزرگ۔ تو آج کے موضوع کے حوالے سے ہم نے گیت منتخب کیا ہے اچی اچی زیرو راک، یعنی 1106۔ اسے جاپانی راک بینڈ وانیما نے پیش کیا ہے۔ یہ بینڈ 2010 میں کوماموتو پریفیکچر کے تین موسیقاروں کینتا، کوشن اور فوجی نے تشکیل دیا تھا۔ اب وہ ٹوکیو میں رہتے ہیں۔ انہوں نے 2014 میں اپنا پہلا البم کین ناٹ بیہیوڈ جاری کیا تھا۔
3: 2017 میں انہوں نے این ایچ کے نئے سال کے میوزک شو کوہاکو اوتاگاسین میں پہلی بار شرکت کی۔
1: 2018 میں انہوں نے اپنا پہلا بڑا مکمل البم ایوری باڈی جاری کیا۔ 2023 میں انہوں نے اپنے آبائی شہر کوماموتو میں اپنا میوزک فیسٹیول منعقد کیا اور جاپان بھر کا ٹور بھی کیا۔
0: کینتا نے یہ گانا اچی اچی زیرو راک اپنے دادا کے لیے لکھا تھا، جو ان کے دادا کی تاریخ وفات ہے، یعنی 1106۔ کینتا کہتے ہیں انہوں نے یہ گانا اپنے دادا کو خط کے طور پہ لکھا تھا۔
3: ان کے دادا کوماموتو پریفیکچر کے ساحلی علاقے اماکوسا میں ماہی گیر تھے اور کینتا ان کے بہت قریب تھے۔ اسی تعلق کی وجہ سے ونیما نے میوزک ویڈیو کو اماکوسا میں سمندر کے کنارے فلمایا، جہاں ان کے دادا ماہی گیری کرتے تھے۔
1: بسما کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ گانا اس لیے منتخب کیا کہ اگرچہ کینتا نے یہ گانا اپنے دادا کے لیے لکھا تھا، اس نے مجھے اپنے دادا دادی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔
0: بسما کہتی ہیں یہ گانا سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیرانو ہی بزرگوں کے لیے شکر گزاری کا دن ہے اور وہ کہتی ہیں یہ گانا مجھے اپنے دادا دادی کی شکر گزاری پر مجبور کرتا ہے اور ان کے لیے کچھ خاص کرنے کی تحریک دیتا ہے۔ وانیما نے اس گیت کو اس بزرگ کے نام کیا ہے جو کہیں دور سفر پر چلے گئے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں۔

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिचिवा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिचिवा नमस्कार। फिर आया एक नया सप्ताह और लेकर आ गए हम आपके पत्र, फेसबुक टिप्पणियाँ और प्यारी सी चुलबुली युवती मायो जापान के साथ एक रोचक वार्ता। शंग्रिला जी, देखिए ना, वक्त पंख लगाकर कैसे उड़ गया पता ही नहीं चला। हम सितंबर के अंतिम सप्ताह में भी पहुंच गए हैं।
0: सही कहा कमाईनी जी, 2026 की अंतिम तिमाही भी आ चुकी है। साल के शुरू में खुद से किए गए वायदों का लेखा जोखा कर ले क्या? इस साल के लिए आपका क्या संकल्प था, क्या आप उसे हासिल कर पाई?
1: इस साल के लिए मैंने संकल्प लिया था कि मैंने जो काम शुरू किया है ना अपना, उसका विस्तार करूं और मेहनत करके उसे आगे बढ़ाऊं। मैं अपने संकल्प में काफी हद तक सफल हुई हूँ और मुझे खुशी है कि मेरी कड़ी मेहनत अब रंग लाने लगी है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताएं कि आपने क्या संकल्प लिया था?
0: भाई कमाईनी जी, मैं तो इस साल प्रकृति में समय बिताना चाहती थी, पहाड़ों पर ट्रेकिंग या समुद्र किनारे सैर करना चाहती थी, लेकिन इस मौसम ने सारी आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया। कभी तो चिलचिलाती तेज धूप और गर्मी, या फिर इतनी तेज मूसलाधार बारिश की सब गड़बड़।
1: जी, इस साल मौसम का मिजाज तो काफी बिगड़ रहा। नागोया एशियाई खेल से एन दो दिन पहले तक वहाँ खूब बारिश हुई। मुझे तो चिंता थी कि खेल का उद्घाटन समारोह कैसे होगा।
0: हाँ, लेकिन इस अप्रत्याशित समस्या के बाद भी समारोह अच्छे से शुरू हो गया। खेल भी बढ़िया चल रहे हैं और अब हम भी क्यों ना चलें अपने श्रोता मित्रों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करें। एशियाई खेलों पर काली चरण स्नेही का फेसबुक टिप्पणी है कि हमें खुशी है इस बार के एशियाई खेल जापान में हो रहे हैं, सबको मेरी शुभकामनाएं। हमें विश्वास है कि जापान में आयोजित ये भव्य एशियाई खेल समारोह यादगार होगा।
1: हम भी आशा करते हैं कि ये खेल सुचारू रूप से संपन्न हो जाएं और जापान और भारत दोनों देशों के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करें।
0: कमाईनी जी, अन्य खेलों के अलावा इस बार मेरी नजर एशियाई खेलों में क्रिकेट पर भी है।
1: लगता है हर भारतीय की तरह क्रिकेट आपके लिए भी एक जुनून है।
0: नहीं, जुनून तो नहीं है, लेकिन हाँ, शौक है। पिछले सप्ताह भारत और जापान की टीमों के बीच दोस्ताना सुजुकी कप का T20 मैच होना था, परंतु बारिश के चलते ये सिर्फ 5 ओवर का रह गया। इसमें जापान की टीम का प्रदर्शन हैरतअंगेज था। क्या शानदार तरीके से एक के बाद एक विकेट चटका लिए। भारत के धुरंधर खिलाड़ी भी उनका खेल देखकर चौंक गए।
1: कमाल है। मेरे ख्याल से जापान की टीम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना खेली भी नहीं है। नतीजा क्या रहा ये भी बताएं।
0: जबरदस्त टक्कर देने के बाद जापानी टीम सिर्फ 2 रन से शिकस्त हुई।
1: यानी जापानी खिलाड़ियों ने भले मैच ना जीता हो, लेकिन दर्शकों का दिल जरूर।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा, देखिए, पिछले सप्ताह हमने बैंगन से बने जापानी व्यंजनों को बनाने की विधि श्रोताओं से साझा की थी और उसकी प्रमो रील में जापान में उगने वाले अलग अलग तरह के बैंगनों को दिखाया था। बैंगनी रंग के अलावा यहाँ सफेद और हरे रंग के बैंगन भी मिलते हैं। उसी के संदर्भ में धान सिंह नेगी ने ये टिप्पणी की है कि भारत में भी होते हैं ऐसे बैंगन।
0: अरे वाह, क्या वाकई! मैंने तो भारत में बचपन से ही बैंगनी रंग का बैंगन देखा है और उसी से ही बैंगनी रंग को समझा भी है, पर ये सफेद और हरे रंग के बैंगन देखकर तो बरसों पुरानी सोच को बदलना पड़ेगा।
1: हाँ, सही कहा, ये सफेद रंग का बैंगन मेरे लिए भी अजूबा था।
0: धान सिंह जी, अगर आपके इलाके में ये मिलता है तो इसका फोटो हमें जरूर भेजें। तस्वीर भेजने के लिए कार्यक्रम विवरण में पत्र लिखने की लिंक मौजूद है।
1: इसी कार्यक्रम पर परालिया जीवराज ने पूछा है कि क्या जापान में भी ये बैंगन का भरता बनता है।
0: जीवराज जी, जापानी व्यंजनों में भारत जैसा मिर्च मसाले वाला भरता तो नहीं होता, लेकिन हाँ, यहाँ गर्मियों में अक्सर अदरक, प्याज और सोया सॉस के साथ भुना हुआ बैंगन जरूर खाया जाता है।
1: गर्मियों के दिन में ये याकिनासु बियर के साथ बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है, मजा आ जाता है। उसको पी के ऐसा लगता है और ये खा के ऐसा लगता है कि पूरी पूरे दिन की थकान मिट गई हो।
0: क्या बात है।
1: परालिया मेयर जीवराज जी ने एक अन्य टिप्पणी में पूछा है कि अगर जापान चेरी का देश है तो भारत क्या है।
0: काफी रोचक सवाल है ये। मेरे ख्याल से भारत में इतनी विविधता है कि सिर्फ एक चीज से उसे जोड़ा नहीं जा सकता। चलिए इस सवाल का जवाब आप श्रोता मित्रों से ही जाना जाए। आप बताइए हमें कि अगर जापान को चेरी का देश कहते हैं तो भारत को क्या कहेंगे।
1: पत्र लिखकर जरूर बताएं। और देखिए ओडिशा किसिंगा से सुरेश अग्रवाल जी का पत्र है, लिखा है, समाचारों में सुना कि शक्तिशाली तूफान दुजियन जापान के पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ रहा है, सुनकर काफी चिंता हुई। प्रार्थना है कि तूफान का असर कम से कम हो और इससे किसी तरह की जनहानि ना हो। इस कठिन समय में जापान के सभी लोगों के लिए हमारी मंगल कामनाएं हैं।
0: सुरेश जी, तूफान तो गुजर गया लेकिन पीछे छोड़ गया कीचड़, मलबा और काफी नुकसान। कई लोगों को काफी हानि हुई है। पुरानी गाड़ियों का कारोबार करने वाले पाकिस्तानी मूल के एक व्यक्ति की करीब 100 गाड़ियां कीचड़ में क्षतिग्रस्त हो गईं।
1: सभी पीड़ितों की सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि सभी का जीवन जल्द ही दोबारा पटरी पर लौटे।
0: जी, और जमशेदपुर से एसबी शर्मा लिखते हैं कि ये जानकर खुशी हुई कि हिंदी सेवा नए कार्यालय में शिफ्ट हो गई है। आपने बताया कि ऑफिस काफी सुगम है, सभी को शुभकामनाएं। मैं ये जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बार एशियाई खेलों के लिए खेल गांव नहीं बनाया गया। खिलाड़ियों को क्रूज शिप और कंटेनर आवास में रखा गया है। क्रूज में एक साथ लगभग 4,000 लोग रह सकते हैं। बढ़िया आइडिया है। उम्मीद है ये बदलाव खिलाड़ियों को भी पसंद आएगा और वे आनंदित होंगे। इस रचनात्मक बदलाव के लिए जापान का स्वागत है। जैसा कि आपने कहा कि अब पिछले लिंक के माध्यम से प्राप्त पत्रों को कार्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे, तो मेरी समझ से इस लिंक को वेबसाइट से हटा देना चाहिए ताकि इस कोई कंफ्यूजन ना हो।
1: शर्मा साहब, पत्र के लिए शुक्रिया। पुरानी लिंक हटाने के लिए आपका सुझाव अच्छा है, इस पर विचार करेंगे। लेकिन पत्र लिखने के लिए वहां तक जाना ही क्यों? कार्यक्रम के विवरण में लिंक है और वेबसाइट पर सबसे ऊपर बैनर पर लिखा है कि पत्र भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
0: जी बिल्कुल। और अब चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की ओर।
1: मित्रों, जैसे हमने कार्यक्रम के आरंभ में बताया था कि आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक प्यारी चुलबुली हिंदी बोलने वाली जापानी युवती मायो जापान से।
0: मायो जी के साथ ये मुलाकात वर्ष 2023 में प्रसारित की जा चुकी है और हमारे श्रोता मित्रों के बीच ये बहुत लोकप्रिय हुई। उसी लोकप्रियता को देखते हुए इसका पुनः प्रसारण किया जा रहा है। आज हमारे साथ है एक विशेष अतिथि। आप सभी ने नाम तो सुना होगा, जापान में हिंदी बोलने वाली जापानी लड़की मायो।
2: नमस्ते
0: मायो सान, स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है NHK वर्ल्ड जापान में आके। थैंक यू।
0: आजकल आपका एक ना डांस वीडियो भारत में बहुत ही वायरल हो रहा है, बहुत लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें आपने भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी जी के साथ रजनीकांत के गाने पर बड़ा ही मजेदार डांस किया है। ऐसा करने का विचार कहाँ से आया?
2: हाँ जी, पहले से सुजुकी जी को मैं जानती थी और सुजुकी जी मुझको जानते थे क्योंकि एक मतलब इवेंट में मुलाकात हुई। लेकिन उसके बाद आजकल सुजुकी जी ट्विटर पे कुछ पानीपुरी खाते हुए या रजनीकांत के चश्मा घुमाते हुए वीडियोस डालना शुरू किया था और एम्बेसी में मेरे दोस्त भी हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि साथ में वीडियोस बनाएं और ऑफ कोर्स मैंने हां कर दिया। और किसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे ये चर्चा करते हुए मुझे लगा शायद सुजुकी जी रजनीकांत जी के डांस भी नाचेंगे, मतलब
0: बहुत ही बढ़िया वीडियो है।
2: वैसे अभी JLR रजनीकांत जी के नई मूवी आई थी और जापान में मतलब छोटा सा रिलीज हुआ था। और वैसे रजनीकांत जी तो बहुत साल से जापान और भारत का एक पुल है क्योंकि जापान में बहुत सारे रजनीकांत फैंस हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि ये मतलब इंडिया जापान रिलेशनशिप के ऊपर भी इसी गाने के ऊपर डांस करना अच्छा होगा, इसलिए मैंने इसी का नाचना है।
0: बहुत बढ़िया। और देखिए YouTube पर आपके लाखों सब्सक्राइबर हैं, शायद करीब 28 लाख सब्सक्राइबर हैं।
2: हाँ जी
0: जी, और उनमें से एक प्रशंसक मैं भी हूँ आपके। Thank वीडियो you. देखकर मुझे बहुत आनंद आता है।
2: धन्यवाद।
0: बड़े बड़े मजेदार विषय पर ही नहीं पर आपके बोलने की अदा आपकी शानदार हिंदी सुनकर बहुत ही प्रभावित हूँ मैं। तो मैं ही नहीं, भारत में आपके काफी फैंस भी होंगे जो आपकी हिंदी सुनकर चौंक जाते होंगे कि आपको इतनी बढ़िया हिंदी बोलना कहाँ से आई और कहाँ से सीखा। जरा खुलकर बताएं कि मायों की मुलाकात हिंदी से कब और कहाँ हुई।
2: जी, तो मैंने ओसाका विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ी है। मतलब मैंने जब निर्णय लिया था जब मैं हाई स्कूल में थी कि हिंदी सीखेंगे, और उसका निर्णय लेना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। लेकिन एक कारण यह है कि मेरे पिताजी अक्सर भारत जाते थे और हिमालय पर्वत में चढ़ते थे, तो वो हमेशा बोलते थे कि इंडिया बहुत मजेदार देश है, हिंदी सीखो बहुत मजा आएगा, ऐसे। वो एक कारण है। और दूसरा कारण, मैं भी विदेश या भाषा में हमेशा से रुचि रखती हूँ, तो इसलिए एक भाषा कॉलेज में सीखना अच्छा होगा ऐसा भी सोच रही थी। और वैसे इंडिया और जापान का संबंध बहुत अच्छा है, और भारत तो सब लोग जानते हैं कि बहुत तेज विकास हो रहा है, इसलिए ये सब सोच के मुझे लगा कि चलो मैं हिंदी सीखूंगी।
0: तो आपने कहा कि आपने विश्वविद्यालय में हिंदी सीखी, लेकिन देखिए किताबों में पढ़ी हुई हिंदी और आम बोलचाल की जो धारा प्रवाह हिंदी है, जिस तरह से आप वीडियो में भी बोलती हैं, शब्दों की समझ, ये सिर्फ किताबों से तो नहीं आ सकती।
2: जी,
0: आप इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल लेती हैं? इसके लिए आपने कुछ खास मेहनत की, कुछ अभ्यास किया? जरा उसके बारे में बताइए।
2: ठीक है, कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ मैं एक भारतीय रेस्टोरेंट में काम करती थी वेटरेस के रूप में, और उसी समय रेस्टोरेंट में दो भारतीय रसोइये थे, और सिर्फ मैं। और उन भारतीय लोगों को जापानीज या इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती थी, इसका मतलब मुझे हिंदी बोलनी थी
0: जी।
2: और ऑर्डर लेकर कुछ बातें भी करना था, जैसे कभी कभी कस्टमर ऐसे बोलते हैं कि मेरे बच्चों को एग से एलर्जी है, इसलिए इसमें एग है कि नहीं इसको पता चल के आ जाइए। तो वो तो बहुत क्रिटिकल बात है, मतलब अच्छे से कम्युनिकेशन तो करना चाहिए। तो ऐसे मतलब मुझे हिंदी बोलनी चाहिए थी, इसलिए उसी एनवायरनमेंट में मतलब पढ़ाई तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा कारण था। और दूसरी बात ये है कि जब मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, तभी तो बहुत सारे दोस्त थे। मतलब ऐसा है कि किताब में भी हिंदी सीख सकते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ बातें करके ज्यादा अच्छे से हिंदी आ जाती है। तो अभी भी मैं सीख रही हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी हिंदी पूरी हो गई, बहुत मैं अभी भी सीख रही हूँ
0: जी। भाषा तो हमेशा ही जारी रहती है सीखना।
2: हाँ।
0: आपने कहा कि आप भारत रही, कितने साल रही?
2: स्टूडेंट के रूप में 14 महीने, एक साल से थोड़ा सा और, उसके बाद भी आजकल तो 3 महीने में 1 महीने तो इंडिया में समय गुजारती हूँ, और पता नहीं कितने, कुल मिलाकर 2 साल, लगभग 2 साल से ज्यादा तो हो गए होंगे, लेकिन काउंट नहीं करती, गिनती नहीं मैं।
0: और मैंने आपके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देखा कि आपको हिंदी फिल्में बहुत पसंद है, आप हमेशा हिंदी फिल्मों पर डांस वीडियो बनाती हैं।
2: जी,
0: हिंदी फिल्में भारतीय संस्कृति समझने और आपकी हिंदी को सुधारने में कितनी सहायक हुई?
2: ऑफ कोर्स बहुत सहायक तो था, पर मुझे लगता है हिंदी मूवी में कभी कभी हिंदी के अलावा भी सीख जाती हूँ, मराठी भी है, गुजराती भी है, बहुत सारी भाषाएं हैं, और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं हिंदी सीख रही हूँ या पंजाबी सीख रही हूँ है ना। तो लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बातचीत में भी भारतीय लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, ये बात है
0: कि सही बात।
2: हिंदी के अंदर में भी बहुत कुछ बोलियां भी हैं
0: जी,
2: या कुछ एक्सेंट भी हैं, तो ये सब जानना तो चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए, बातें करने के लिए, इसलिए मूवी से ऐसी भाषाएं सीखना भी बहुत अच्छा था, या तो महाभारत जैसे कुछ मुश्किल मूवीज में तो बहुत शुद्ध हिंदी भी मैं सीख सकती हूँ, जो किताबों से सीखने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन मूवी में तो मजेदार है, तो देखती रह सकूंगी ना। किताब तो थोड़ा थक जाती हूँ, लेकिन मूवी है तो देखती रहती हूँ, तो ऐसा भी तो हाँ, बहुत सारी मदद की है।
0: तो आप ये बताइए कि आपको हिंदी फिल्में तो आपने बताया बहुत पसंद है और आप जब भी थकती नहीं है उसको देखते हुए बिल्कुल भी, तो आपके पसंदीदा हीरो तो मुझे पता है ऋतिक रोशन।
2: हाँ लेकिन आजकल ना आजकल मुझे रणवीर सिंह बहुत अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा,
2: तो मैं निर्णय नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कौन सा सबसे अच्छा लगता है।
0: निर्देशक कौन सा अच्छे लगते हैं?
2: कौन निर्देशक?
0: फिल्म निर्देशक, डायरेक्टर?
2: डायरेक्टर तो संजय लीला भंसाली जी है।
0: क्यों?
2: क्योंकि उनकी मूवीज बहुत सुंदर है, लगता है कि हर क्षण आर्ट है। मतलब क्या बोलेंगे, बहुत सुंदर है।
0: सबसे फेवरेट उनकी फिल्म कौन सी रही आपकी? आपको कौन सी फिल्म है जो बहुत ही पसंद आई है?
2: बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं कहूंगी कोड़ियों की रासलीला रामलीला।
0: अच्छा,
2: आपने देखी है?
0: जी जी, रणवीर अच्छा। और दीपिका पादुकोण। हाँ। की
2: मैं वो उसमें ना एक विशेष क्या था कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच कुछ तो है। बाद में तो पता चला कि वो उसी समय एडिट करने लगे और उसके बाद शादी भी हुई है, लेकिन सुना है कि उसी मूवी शूटिंग के दौरान वे लोग के बीच में कुछ तो चक्कर शुरू हुआ है।
0: तो गॉसिप देख रही थी।
2: और नहीं नहीं, वो मूवी से पता चलता है कि उन दोनों के केमिस्ट्री बहुत है, तो देखकर मुझे लगता है यार यार मुझे भी ऐसा प्यार तो करना चाहिए। और एक्टिंग भी बहुत अच्छे हैं, डायलॉग भी बहुत, मतलब वो कुछ गुजराती डायलेक्ट के साथ है, और दीपिका पादुकोण जी के बोलने का तरीका कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग औरत और कुछ कमजोर औरत दोनों इकट्ठे होके बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: और डांस भी बहुत अच्छा,
2: डांस भी बहुत अच्छा है। और उनके इश्कें रुकशियां करके एक डांस है, वो मैंने पूरा कॉपी किया था, मतलब हर कोरियोग्राफी हर कैमरा एंगल सब कॉपी करके एक वीडियो बनाया था, तो उतना मुझे पसंद है।
1: मित्रों, मायू जापान के साथ ये मुलाकात आपको कैसी लगी जरूर बताएं, आपके पत्रों का हमें इंतजार है।
0: कमाईनी जी, मायू जी भारतीय फिल्मों की खासी शौकीन है और इन दिनों में भारतीय सिनेमा में अपना भाग्य आजमा रही हैं। इसी कोशिश के चलते उन्होंने कुछ समय पहले लघु वीडियो श्रृंखला मोशी मोशी मुंबई बनाई, जो YouTube पर उपलब्ध है। भारत और जापान के बीच मैत्री को लेकर बनी ये लघु सीरीज काफी मजेदार है।
1: अरे वाह, मैं भी इसे देखना चाहूंगी। और मित्रों, मायू जी के साथ ये मुलाकात अगले हफ्ते भी जारी रहेगी,
0: जरूर सुनिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा का एक कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
1: और कामायनी सिंह को।
0: सायोनारा, नमस्कार।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिचिवा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिचिवा नमस्कार। फिर आया एक नया सप्ताह और लेकर आ गए हम आपके पत्र, फेसबुक टिप्पणियां और प्यारी सी चुलबुली युवती मायो जापान के साथ एक रोचक वार्ता। शांग्रीला जी, देखिए ना, वक्त पंख लगाकर कैसे उड़ गया पता ही नहीं चला। हम सितंबर के अंतिम सप्ताह में भी पहुंच गए हैं।
0: सही कहा कमाईनी जी, 2026 की अंतिम तिमाही भी आ चुकी है। साल के शुरू में खुद से किए गए वायदों का लेखा जोखा कर ले क्या? इस साल के लिए आपका क्या संकल्प था, क्या आप उसे हासिल कर पाई?
1: इस साल के लिए मैंने संकल्प लिया था कि मैंने जो काम शुरू किया है ना अपना, उसका विस्तार करूं और मेहनत करके उसे आगे बढ़ाऊं। मैं अपने संकल्प में काफी हद तक सफल हुई हूँ और मुझे खुशी है कि मेरी कड़ी मेहनत अब रंग लाने लगी है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताएं कि आपने क्या संकल्प लिया था?
0: भाई कमाईनी जी, मैं तो इस साल प्रकृति में समय बिताना चाहती थी, पहाड़ों पर ट्रेकिंग या समुद्र किनारे सैर करना चाहती थी, लेकिन इस मौसम ने सारी आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया। कभी तो चिलचिलाती तेज धूप और गर्मी, या फिर इतनी तेज मूसलाधार बारिश की सब गड़बड़।

0: جی اس سال موسم کا مزاج تو کافی بگڑ رہا. ناگویا ایشیائی کھیل سے این دو دن پہلے تک وہاں خوب بارش ہوئی. مجھے تو چنتا تھی کہ کھیل کا ادگھاٹن سماروہ کیسے ہوگا.
1: ہاں لیکن اس اپرتیاشت سمسیا کے بعد بھی سماروہ اچھے سے شروع ہو گیا, کھیل بھی بڑھیا چل رہے ہیں, اور اب ہم بھی کیوں نہ چلیں اپنے شروتا متروں کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کریں. ایشیائی کھیلوں پر کالی چرن سنیہی کا فیس بک ٹپنی ہے کہ ہمیں خوشی ہے اس بار کے ایشیائی کھیل جاپان میں ہو رہے ہیں, سب کو میری شبھ کامنائیں. ہمیں وشواس ہے کہ جاپان میں آیوجت یہ بھویہ ایشیائی کھیل سماروہ یادگار ہوگا.
0: ہم بھی آشا کرتے ہیں کہ یہ کھیل سچارو روپ سے سمپن ہو جائیں اور جاپان اور بھارت دونوں دیشوں کے کھلاڑی شاندار پردرشن کریں.
1: کمائنی جی, انیہ کھیلوں کے علاوہ اس بار میری نظر ایشیائی کھیلوں میں کرکٹ پر بھی ہے.
0: لگتا ہے ہر بھارتی کی طرح کرکٹ آپ کے لیے بھی ایک جنون ہے.
1: نہیں جنون تو نہیں ہے لیکن ہاں شوق ہے. پچھلے سپتاہ بھارت اور جاپان کی ٹیموں کے بیچ دوستانہ سوزوکی کپ کا T20 میچ ہونا تھا, پرنتو بارش کے چلتے یہ صرف 5 اوور کا رہ گیا. اس میں جاپان کی ٹیم کا پردرشن حیرت انگیز تھا. کیا شاندار طریقے سے ایک کے بعد ایک وکٹ چٹکا لیے. بھارت کے دھرندر کھلاڑی بھی ان کا کھیل دیکھ کر چونک گئے.
0: کمال ہے. میرے خیال سے جاپان کی ٹیم تو انتراشٹریہ استر پر اتنا کھیلی بھی نہیں ہے. نتیجہ کیا رہا یہ بھی بتائیں.
1: زبردست ٹکر دینے کے بعد جاپانی ٹیم صرف 2 رن سے شکست ہوئی.
0: یعنی جاپانی کھلاڑیوں نے بھلے میچ نہ جیتا ہو لیکن درشکوں کا دل ضرور
1: جیتا. جی جی بالکل بالکل.
0: اچھا دیکھیے, پچھلے سپتاہ ہم نے بینگن سے بنے جاپانی ویجنوں کو بنانے کی ودھی شروتاؤں سے ساجھا کی تھی, اور اس کی پرومو ریل میں جاپان میں اگنے والے الگ الگ طرح کے بینگنوں کو دکھایا تھا. بینگنی رنگ کے علاوہ یہاں سفید اور ہرے رنگ کے بینگن بھی ملتے ہیں. اسی کے سندرب میں دھان سنگھ نیگی نے یہ ٹپنی کی ہے کہ بھارت میں بھی ہوتے ہیں ایسے بینگن.
1: ارے واہ کیا واقعی, میں نے تو بھارت میں بچپن سے ہی بینگنی رنگ کا بینگن دیکھا ہے اور اسی سے ہی بینگنی رنگ کو سمجھا بھی ہے. پر یہ سفید اور ہرے رنگ کے بینگن دیکھ کر تو برسوں پرانی سوچ کو بدلنا پڑے گا.
0: ہاں صحیح کہا, یہ سفید رنگ کا بینگن میرے لیے بھی عجوبہ تھا.
1: دھان سنگھ جی, اگر آپ کے علاقے میں یہ ملتا ہے تو اس کا فوٹو ہمیں ضرور بھیجیں. تصویر بھیجنے کے لیے کاریکرم وورن میں پتر لکھنے کی لنک موجود ہے.
0: اسی کاریکرم پر پرالیا جیو راج نے پوچھا ہے کہ کیا جاپان میں بھی بینگن کا بھرتا بنتا ہے.
1: جیوراج جی, جاپانی ویجنوں میں بھارت جیسا مرچ مسالے والا بھرتا تو نہیں ہوتا, لیکن ہاں یہاں گرمیوں میں اکثر ادرک پیاز اور سوئی سوس کے ساتھ بھنا ہوا بینگن ضرور کھایا جاتا ہے.
0: گرمیوں کے دن میں یہ یاکی ناسو بیئر کے ساتھ بہت بہت بہت اچھا لگتا ہے, مزہ آ جاتا ہے. اس کو پی کے ایسا لگتا ہے اور یہ کھا کے ایسا لگتا ہے کہ پورے دن کی تھکان مٹ گئی ہو.
1: کیا بات ہے.
0: پرالیا جیوراج جی نے ایک انیہ ٹپڑی میں پوچھا ہے کہ اگر جاپان چیری کا دیش ہے تو بھارت کیا ہے.
1: کافی روچک سوال ہے یہ. میرے خیال سے بھارت میں اتنی وویدھتا ہے کہ صرف ایک چیز سے اسے جوڑا نہیں جا سکتا. چلیے اس سوال کا جواب آپ شروتا متروں سے ہی جانا جائے. آپ بتائیے ہمیں کہ اگر جاپان کو چیری کا دیش کہتے ہیں تو بھارت کو کیا کہیں گے.
0: پتر لکھ کر ضرور بتائیں. اور دیکھیے, اوڈیشا کسنگا سے سریش اگروال جی کا پتر ہے. لکھا ہے, سماچاروں میں سنا کہ شکتیشالی طوفان دوجین جاپان کے پوروی حصے کی اور بڑھ رہا ہے. سن کر کافی چنتا ہوئی. پرارتھنا ہے کہ طوفان کا اثر کم سے کم ہو اور اس سے کسی طرح کی جن ہانی نہ ہو. اس کٹھن سمے میں جاپان کے سبھی لوگوں کے لیے ہماری منگل کامنائیں ہیں.
1: سریش جی, طوفان تو گزر گیا لیکن پیچھے چھوڑ گیا کیچڑ ملبا اور کافی نقصان. کئی لوگوں کو کافی ہانی ہوئی ہے. پرانی گاڑیوں کا کاروبار کرنے والے پاکستانی مول کے ایک ویکتی کی قریب 100 گاڑیاں کیچڑ میں کھتیگرست ہو گئیں.
0: سبھی پیڑتوں کی سہایتا کے لیے ہم پرارتھنا کرتے ہیں اور آشا کرتے ہیں کہ سبھی کا جیون جلد ہی دوبارہ پٹری پر لوٹے.
1: جی, اور جمشید پور سے ایس بی شرما لکھتے ہیں کہ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ہندی سیوا نئے کاریالے میں شفٹ ہو گئی ہے. آپ نے بتایا کہ آفس کافی سگم ہے, سبھی کو شبھ کامنائیں. میں یہ جان کر تھوڑا آشچری ہوا کہ اس بار ایشیائی کھیلوں کے لیے کھیل گاؤں نہیں بنایا گیا. खिलाड़ियों को क्रूज शिप और कंटेनर आवास में रखा गया है। क्रूज में एक साथ लगभग 4,000 लोग रह सकते हैं। बढ़िया आइडिया है। उम्मीद है ये बदलाव खिलाड़ियों को भी पसंद आएगा और वे आनंदित होंगे। इस रचनात्मक बदलाव के लिए जापान का स्वागत है। जैसा कि आपने कहा कि अब पिछले लिंक के माध्यम से प्राप्त पत्रों को कार्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे, तो मेरी समझ से इस लिंक को वेबसाइट से हटा देना चाहिए ताकि इस कोई कंफ्यूजन ना हो।
0: शर्मा साहब, पत्र के लिए शुक्रिया। पुरानी लिंक हटाने के लिए आपका सुझाव अच्छा है, इस पर विचार करेंगे। लेकिन पत्र लिखने के लिए वहां तक जाना ही क्यों? कार्यक्रम के विवरण में लिंक है और वेबसाइट पर सबसे ऊपर बैनर पर लिखा है कि पत्र भेजने के लिए यहाँ क्लिक करें।
1: जी बिल्कुल। और अब चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की ओर।
0: मित्रों, जैसे हमने कार्यक्रम के आरंभ में बताया था कि आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक प्यारी चुलबुली हिंदी बोलने वाली जापानी युवती मायो जापान से।
1: मायो जी के साथ ये मुलाकात वर्ष 2023 में प्रसारित की जा चुकी है और हमारे श्रोता मित्रों के बीच ये बहुत लोकप्रिय हुई। उसी लोकप्रियता को देखते हुए इसका पुनः प्रसारण किया जा रहा है। आज हमारे साथ है एक विशेष अतिथि। आप सभी ने नाम तो सुना होगा, जापान में हिंदी बोलने वाली जापानी लड़की मायो।
2: नमस्ते
1: मायो सान, स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है NHK वर्ल्ड जापान में आके। थैंक यू।
1: आजकल आपका एक ना डांस वीडियो भारत में बहुत ही वायरल हो रहा है, बहुत लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें आपने भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी जी के साथ रजनीकांत के गाने पर बड़ा ही मजेदार डांस किया है। ऐसा करने का विचार कहाँ से आया?
2: हाँ जी, पहले से सुजुकी जी को मैं जानती थी और सुजुकी जी मुझको जानते थे क्योंकि एक मतलब इवेंट में मुलाकात हुई। लेकिन उसके बाद आजकल सुजुकी जी ट्विटर पे कुछ पानीपुरी खाते हुए या रजनीकांत के चश्मा घुमाते हुए वीडियोस डालना शुरू किया था और एम्बेसी में मेरे दोस्त भी हैं तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि साथ में वीडियोस बनाएं और ऑफकोर्स मैंने हां कर दिया। और किसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे ये चर्चा करते हुए मुझे लगा शायद सुजुकी जी रजनीकांत जी के डांस भी नाचेंगे, मतलब
1: बहुत ही बढ़िया वीडियो है।
2: वैसे अभी JLR रजनीकांत जी के नई मूवी आई थी और जापान में मतलब छोटा सा रिलीज हुआ था। और वैसे रजनीकांत जी तो बहुत साल से जापान और भारत का एक पुल है क्योंकि जापान में बहुत सारे रजनीकांत फैंस हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि ये मतलब इंडिया जापान रिलेशनशिप के ऊपर भी इसी गाने के ऊपर डांस करना अच्छा होगा, इसलिए मैंने इसी का नाचना है।
1: बहुत बढ़िया। और देखिए YouTube पर आपके लाखों सब्सक्राइबर हैं, शायद करीब 28 लाख सब्सक्राइबर हैं।
2: हाँ जी
1: जी। और उनमें से एक प्रशंसक मैं भी हूँ आपके। Thank वीडियो you. देखकर मुझे बहुत आनंद आता है।
2: धन्यवाद।
1: बड़े बड़े मजेदार विषय पर ही नहीं पर आपके बोलने की अदा, आपकी शानदार हिंदी सुनकर बहुत ही प्रभावित हूँ मैं। तो मैं ही नहीं, भारत में आपके काफी फैंस भी होंगे जो आपकी हिंदी सुनकर चौंक जाते होंगे कि आपको इतनी बढ़िया हिंदी बोलना कहाँ से आई और कहाँ से सीखा। जरा खुलकर बताएं कि मायो की मुलाकात हिंदी से कब और कहाँ हुई?
2: जी, तो मैंने ओसाका विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ी है। मतलब मैंने जब निर्णय लिया था जब मैं हाई स्कूल में थी कि हिंदी सीखेंगे, और उसका निर्णय लेना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। लेकिन एक कारण यह है कि मेरे पिताजी अक्सर भारत जाते थे और हिमालय पर्वत में चढ़ते थे, तो वो हमेशा बोलते थे कि इंडिया बहुत मजेदार देश है, हिंदी सीखो बहुत मजा आएगा, ऐसे। वो एक कारण है। और दूसरा कारण, मैं भी विदेश या भाषा में हमेशा से रुचि रखती हूँ, तो इसलिए एक भाषा कॉलेज में सीखना अच्छा होगा ऐसा भी सोच रही थी। और वैसे इंडिया और जापान का संबंध बहुत अच्छा है और भारत तो सब लोग जानते हैं कि बहुत तेज विकास हो रहा है, इसलिए ये सब सोच के मुझे लगा कि चलो मैं हिंदी सीखूंगी।
1: तो आपने कहा कि आपने विश्वविद्यालय में हिंदी सीखी, लेकिन देखिए किताबों में पढ़ी हुई हिंदी और आम बोलचाल की जो धारा प्रवाह हिंदी है, जिस तरह से आप वीडियो में भी बोलती हैं, शब्दों की समझ, ये सिर्फ किताबों से तो नहीं आ सकती।
2: जी,
1: आप इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल लेती हैं? इसके लिए आपने कुछ खास मेहनत की, कुछ अभ्यास किया? जरा उसके बारे में बताइए।
2: ठीक है, कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ मैं एक भारतीय रेस्टोरेंट में काम करती थी वेटरेस के रूप में, और उसी समय रेस्टोरेंट में दो भारतीय रसोई थे, और सिर्फ मैं, और उन भारतीय लोगों को जापनीज या इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती थी। इसका मतलब मुझे हिंदी बोलनी थी
1: जी।
2: और ऑर्डर लेकर कुछ बातें भी करना था, जैसे कभी कभी कस्टमर ऐसे बोलते हैं कि मेरे बच्चों को एग से एलर्जी है, इसलिए इसमें एग है कि नहीं इसको पता चल के आ जाइए। तो वो तो बहुत क्रिटिकल बात है, मतलब अच्छे से कम्युनिकेशन तो करना चाहिए। तो ऐसे मतलब मुझे हिंदी बोलनी चाहिए थी, इसलिए उसी इन्वायरमेंट में मतलब पढ़ाई तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा कारण था। और दूसरी बात ये है कि जब मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, तभी तो बहुत सारे दोस्त थे, मतलब ऐसा है कि किताब में भी हिंदी सीख सकते हैं लेकिन दोस्तों के साथ बातें करके ज्यादा अच्छे से हिंदी आ जाती है। तो अभी भी मैं सीख रही हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी हिंदी पूरी हो गई, बहुत मैं अभी भी सीख रही हूँ
1: जी। भाषा तो हमेशा ही जारी रहती है सीखना।
2: हाँ।
1: आपने कहा कि आप भारत रही, कितने साल रही?
2: स्टूडेंट के रूप में 14 महीने, एक साल से थोड़ा सा और उसके बाद भी आजकल तो 3 महीने में 1 महीने तो इंडिया में समय गुजारती हूँ, और पता नहीं कितने, कुल मिलाकर 2 साल, लगभग 2 साल से ज्यादा तो हो गए होंगे, लेकिन काउंट नहीं करती, गिनती नहीं मैं।
1: और मैंने आपके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देखा कि आपको हिंदी फिल्में बहुत पसंद है, आप हमेशा हिंदी फिल्मों पर डांस वीडियो बनाती हैं
2: जी।
1: हिंदी फिल्में भारतीय संस्कृति समझने और आपकी हिंदी को सुधारने में कितनी सहायक हुई?
2: ऑफ कोर्स बहुत सहायक तो था, पर मुझे लगता है हिंदी मूवी में कभी कभी हिंदी के अलावा भी सीख जाती हूँ, मराठी भी है, गुजराती भी है, बहुत सारी भाषाएं हैं, और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं हिंदी सीख रही हूँ या पंजाबी सीख रही हूँ है ना। तो लेकिन ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि बातचीत में भी भारतीय लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, ये बात है
1: कि सही बात।
2: हिंदी के अंदर में भी बहुत कुछ बोलियां भी हैं
1: जी,
2: या कुछ एक्सेंट भी हैं, तो ये सब जानना तो चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए, बातें करने के लिए, इसलिए मूवी से ऐसी भाषाएं सीखना भी बहुत अच्छा था, या तो महाभारत जैसे कुछ मुश्किल मूवीज में तो बहुत शुद्ध हिंदी भी मैं सीख सकती हूँ, जो किताबों से सीखने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन मूवी में तो मजेदार है तो देखती रह सकूंगी ना। किताब तो थोड़ा थक जाती हूँ लेकिन मूवी है तो देखती रहती हूँ, तो ऐसा भी तो हाँ बहुत सारी मदद की है।
1: तो आप ये बताइए कि आपको हिंदी फिल्में तो आपने बताया बहुत पसंद है और आप जब भी थकती नहीं है उसको देखते
2: जी,
1: हुए
2: हाँ, जी, जी,
1: बिल्कुल भी। तो आपके पसंदीदा हीरो तो मुझे पता है ऋतिक रोशन।
2: हाँ लेकिन आजकल ना, आजकल मुझे रणवीर सिंह बहुत अच्छे लगते हैं।
1: अच्छा।
2: तो मैं निर्णय नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कौन सबसे अच्छा लगता है।
1: निर्देशक कौन सा अच्छे लगते हैं?
2: कौन निर्देशक?
1: फिल्म निर्देशक, डायरेक्टर?
2: डायरेक्टर तो संजय लीला भंसाली जी है।
1: क्यों?
2: क्योंकि उनकी मूवीज बहुत सुंदर है, लगता है कि हर क्षण आर्ट है, मतलब क्या बोलेंगी, बहुत सुंदर है।
1: सबसे फेवरेट उनकी फिल्म कौन सी रही आपकी? आपको कौन सी फिल्म है जो बहुत ही पसंद आई है?
2: बहुत मुश्किल सवाल है लेकिन मैं कहूंगी गोड़ियों की रासलीला रामलीला।
1: अच्छा।
2: आपने देखी है?
1: जी जी, रणवीर अच्छा। और दीपिका पादुकोण हाँ। की
2: मैं उसमें ना ये विशेष क्या था कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच कुछ तो है बाद में तो पता चला कि वो उसी समय डेट करने लगे और उसके बाद शादी भी हुई है, लेकिन सुना है कि उसी मूवी शूटिंग के दौरान वे लोग के बीच में कुछ तो चक्कर शुरू हुआ है।
1: तो गॉसिप देख रही थी
2: और नहीं नहीं वो मूवी से पता चलता है कि उन दोनों के केमिस्ट्री बहुत है, तो देखकर मुझे लगता है यार यार मुझे भी ऐसा प्यार तो करना चाहिए और एक्टिंग भी बहुत अच्छे हैं, डायलॉग भी बहुत, मतलब वो कुछ गुजराती डायलेक्ट के साथ है और दीपिका पादुकोण जी के बोलने का तरीका कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग औरत और कुछ कमजोर औरत दोनों इकट्ठे होके बहुत बढ़िया एक्टिंग की है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: और डांस भी बहुत अच्छा,
2: डांस भी बहुत अच्छा है। और उनके इश्कें रुक्सियां करके एक डांस है वो मैंने पूरा कॉपी किया था, मतलब हर कोरियोग्राफी हर कैमरा एंगल सब कॉपी करके एक वीडियो बनाया था तो उतना मुझे पसंद है।
0: मित्रों मायो जापान के साथ ये मुलाकात आपको कैसी लगी जरूर बताएं, आपके पत्रों का हमें इंतजार है।
1: कमाईनी जी, मायो जी भारतीय फिल्मों की खासी शौकीन हैं और इन दिनों में भारतीय सिनेमा में अपना भाग्य आजमा रही हैं। इसी कोशिश के चलते उन्होंने कुछ समय पहले लघु वीडियो श्रृंखला मोशी मोशी मुंबई बनाई जो यूट्यूब पर उपलब्ध है। भारत और जापान के बीच मैत्री को लेकर बनी यह लघु सीरीज काफी मजेदार है।
0: अरे वाह, मैं भी इसे देखना चाहूंगी। और मित्रों मायो जी के साथ ये मुलाकात अगले हफ्ते भी जारी रहेगी,
1: जरूर सुनिएगा। और दोस्तों इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा का यह कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। अनुमति दीजिए अपनी सखी शांगुला जैन को
0: और कामायनी सिंह को।
1: सायोनारा, नमस्कार।

0: ये NHK World Japan की उर्दू सर्विस है। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज पर सुनी जा सकती हैं। इंटरनेट पर आप हमारे प्रोग्राम nhk.jp/urdu पर सुन सकते हैं।
1: जी सामिन, प्रोग्राम आपने सुना यकीनन पसंद आया होगा। कोची प्रीफेक्चर का सुनकर मुझे अपना शहर बड़ा याद आया, क्योंकि मेरा ताल्लुक है पाकिस्तान के शहर कराची से, जो कि अपने खूबसूरत समुंदर और उसके किनारे बने पिकनिक पॉइंट्स और उसके मुख्तलिफ साहिलों पर दूर तक बने हुए छोटे छोटे घर जिन्हें हर्ष कहते हैं की वजह से मशहूर है, जहाँ हम साल में एक दफा पूरा दिन गुजारने जरूर जाते थे। और ये खूबसूरत यादें आज भी ताजा हैं। अम्मी हमें बचपन में तरह तरह की मछलियां खिलाती थी, क्योंकि बड़ी आसानी से जो दस्तियाब थी।

0: बनाने के लिए बोनीतो मछली से खूब मेहनत से होमबुशी बनाई जाती है, जो सिर्फ जापान का ही खासा है। अब तो मैं भी इताशी खूब इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन एक बात का थोड़ा अफसोस होता है कि जापान के रिवायती तरीकों को जिंदा रखने वाले माहिरीन आहिस्ता आहिस्ता नापैद होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नौजवानों को आगे बढ़कर इन रिवायती तरीकों को सीखना चाहिए, ताकि ये नस्ल दर नस्ल चलते रहें। तो सामीन, आज के प्रोग्राम के बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है nhk.jp/urdu। और अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
1: Tokyo からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिचिवा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिचिवा नमस्कार। फिर आया एक नया सप्ताह और लेकर आ गए हम आपके पत्र, फेसबुक टिप्पणियां और प्यारी सी चुलबुली युवती मायो जापान के साथ एक रोचक वार्ता। शंग्रिला जी, देखिए ना, वक्त पंख लगाकर कैसे उड़ गया पता ही नहीं चला। हम सितंबर के अंतिम सप्ताह में भी पहुंच गए हैं।
0: सही कहा कमाईनी जी, 2026 की अंतिम तिमाही भी आ चुकी है। साल के शुरू में खुद से किए गए वायदों का लेखा जोखा कर ले क्या? इस साल के लिए आपका क्या संकल्प था, क्या आप उसे हासिल कर पाई?
1: इस साल के लिए मैंने संकल्प लिया था कि मैंने जो काम शुरू किया है ना अपना, उसका विस्तार करूं और मेहनत करके उसे आगे बढ़ाऊं। मैं अपने संकल्प में काफी हद तक सफल हुई हूँ और मुझे खुशी है कि मेरी कड़ी मेहनत अब रंग लाने लगी है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताएं कि आपने क्या संकल्प लिया था?
0: भाई कमाईनी जी, मैं तो इस साल प्रकृति में समय बिताना चाहती थी, पहाड़ों पर ट्रेकिंग या समुद्र किनारे सैर करना चाहती थी, लेकिन इस मौसम ने सारी आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया। कभी तो चिलचिलाती तेज धूप और गर्मी, या फिर इतनी तेज मूसलाधार बारिश की सब गड़बड़।
1: जी, इस साल मौसम का मिजाज तो काफी बिगड़ रहा। नागोया एशियाई खेल से एन दो दिन पहले तक वहाँ खूब बारिश हुई। मुझे तो चिंता थी कि खेल का उद्घाटन समारोह कैसे होगा।
0: हाँ, लेकिन इस अप्रत्याशित समस्या के बाद भी समारोह अच्छे से शुरू हो गया। खेल भी बढ़िया चल रहे हैं और अब हम भी क्यों ना चलें अपने श्रोता मित्रों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करें। एशियाई खेलों पर काली चरण स्नेही का फेसबुक टिप्पणी है कि हमें खुशी है इस बार के एशियाई खेल जापान में हो रहे हैं, सबको मेरी शुभकामनाएं। हमें विश्वास है कि जापान में आयोजित ये भव्य एशियाई खेल समारोह यादगार होगा।
1: हम भी आशा करते हैं कि ये खेल सुचारू रूप से संपन्न हो जाएं और जापान और भारत दोनों देशों के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करें।
0: कमाईनी जी, अन्य खेलों के अलावा इस बार मेरी नजर एशियाई खेलों में क्रिकेट पर भी है।
1: लगता है हर भारतीय की तरह क्रिकेट आपके लिए भी एक जुनून है।
0: नहीं, जुनून तो नहीं है, लेकिन हाँ, शौक है। पिछले सप्ताह भारत और जापान की टीमों के बीच दोस्ताना सुजुकी कप का T20 मैच होना था, परंतु बारिश के चलते ये सिर्फ 5 ओवर का रह गया। इसमें जापान की टीम का प्रदर्शन हैरतअंगेज था। क्या शानदार तरीके से एक के बाद एक विकेट चटका लिए। भारत के धुरंधर खिलाड़ी भी उनका खेल देखकर चौंक गए।
1: वाह, कमाल है। मेरे ख्याल से जापान की टीम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना खेली भी नहीं है। नतीजा क्या रहा ये भी बताएं।
0: जबरदस्त टक्कर देने के बाद जापानी टीम सिर्फ 2 रन से शिकस्त हुई।
1: यानी जापानी खिलाड़ियों ने भले मैच ना जीता हो, लेकिन दर्शकों का दिल जरूर
0: जीता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा, देखिए, पिछले सप्ताह हमने बैंगन से बने जापानी व्यंजनों को बनाने की विधि श्रोताओं से साझा की थी और उसकी प्रमो रील में जापान में उगने वाले अलग अलग तरह के बैंगनों को दिखाया था। बैंगनी रंग के अलावा यहाँ सफेद और हरे रंग के बैंगन भी मिलते हैं। उसी के संदर्भ में धान सिंह नेगी ने ये टिप्पणी की है कि भारत में भी होते हैं ऐसे बैंगन।
0: अरे वाह, क्या वाकई! मैंने तो भारत में बचपन से ही बैंगनी रंग का बैंगन देखा है और उसी से ही बैंगनी रंग को समझा भी है, पर ये सफेद और हरे रंग के बैंगन देखकर तो बरसों पुरानी सोच को बदलना पड़ेगा।
1: हाँ, सही कहा, ये सफेद रंग का बैंगन मेरे लिए भी अजूबा था।
0: धान सिंह जी, अगर आपके इलाके में ये मिलता है तो इसका फोटो हमें जरूर भेजें। तस्वीर भेजने के लिए कार्यक्रम विवरण में पत्र लिखने की लिंक मौजूद है।
1: इसी कार्यक्रम पर परालिया जीवराज ने पूछा है कि क्या जापान में भी बैंगन का भरता बनता है।
0: जीवराज जी, जापानी व्यंजनों में भारत जैसा मिर्च मसाले वाला भरता तो नहीं होता, लेकिन हाँ, यहाँ गर्मियों में अक्सर अदरक, प्याज और सोया सॉस के साथ भुना हुआ बैंगन जरूर खाया जाता है।
1: गर्मियों के दिन में ये याकी नासू बियर के साथ बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है, मजा आ जाता है। उसको पी के ऐसा लगता है और ये खा के ऐसा लगता है कि पूरी पूरे दिन की थकान मिट गई हो।
0: क्या बात है।
1: परालिया पर जीवराज जी ने एक अन्य टिप्पणी में पूछा है कि अगर जापान चेरी का देश है तो भारत क्या है।
0: काफी रोचक सवाल है ये। मेरे ख्याल से भारत में इतनी विविधता है कि सिर्फ एक चीज से उसे जोड़ा नहीं जा सकता। चलिए इस सवाल का जवाब आप श्रोता मित्रों से ही जाना जाए। आप बताइए हमें कि अगर जापान को चेरी का देश कहते हैं तो भारत को क्या कहेंगे।
1: पत्र लिखकर जरूर बताएं। और देखिए ओडिशा किसिंगा से सुरेश अग्रवाल जी का पत्र है, लिखा है, समाचारों में सुना कि शक्तिशाली तूफान दुजियन जापान के पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ रहा है, सुनकर काफी चिंता हुई। प्रार्थना है कि तूफान का असर कम से कम हो और इससे किसी तरह की जनहानि ना हो। इस कठिन समय में जापान के सभी लोगों के लिए हमारी मंगल कामनाएं हैं।
0: सुरेश जी, तूफान तो गुजर गया लेकिन पीछे छोड़ गया कीचड़, मलबा और काफी नुकसान। कई लोगों को काफी हानि हुई है। पुरानी गाड़ियों का कारोबार करने वाले पाकिस्तानी मूल के एक व्यक्ति की करीब 100 गाड़ियां कीचड़ में क्षतिग्रस्त हो गईं।
1: सभी पीड़ितों की सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि सभी का जीवन जल्द ही दोबारा पटरी पर लौटे।
0: जी, और जमशेदपुर से एसबी शर्मा लिखते हैं कि ये जानकर खुशी हुई कि हिंदी सेवा नए कार्यालय में शिफ्ट हो गई है। आपने बताया कि ऑफिस काफी सुगम है, सभी को शुभकामनाएं। मैं ये जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बार एशियाई खेलों के लिए खेल गांव नहीं बनाया गया। खिलाड़ियों को क्रूज शिप और कंटेनर आवास में रखा गया है। क्रूज में एक साथ लगभग 4,000 लोग रह सकते हैं। बढ़िया आइडिया है। उम्मीद है ये बदलाव खिलाड़ियों को भी पसंद आएगा और वे आनंदित होंगे। इस रचनात्मक बदलाव के लिए जापान का स्वागत है। जैसा कि आपने कहा कि अब पिछले लिंक के माध्यम से प्राप्त पत्रों को कार्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे, तो मेरी समझ से इस लिंक को वेबसाइट से हटा देना चाहिए ताकि इस कोई कंफ्यूजन ना हो।
1: शर्मा साहब, पत्र के लिए शुक्रिया। पुरानी लिंक हटाने के लिए आपका सुझाव अच्छा है, इस पर विचार करेंगे। लेकिन पत्र लिखने के लिए वहां तक जाना ही क्यों? कार्यक्रम के विवरण में लिंक है और वेबसाइट पर सबसे ऊपर बैनर पर लिखा है कि पत्र भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
0: जी बिल्कुल। और अब चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की ओर।
1: मित्रों, जैसे हमने कार्यक्रम के आरंभ में बताया था कि आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक प्यारी चुलबुली हिंदी बोलने वाली जापानी युवती मायो जापान से।
0: मायो जी के साथ ये मुलाकात वर्ष 2023 में प्रसारित की जा चुकी है और हमारे श्रोता मित्रों के बीच ये बहुत लोकप्रिय हुई। उसी लोकप्रियता को देखते हुए इसका पुनः प्रसारण किया जा रहा है। आज हमारे साथ है एक विशेष अतिथि। आप सभी ने नाम तो सुना होगा, जापान में हिंदी बोलने वाली जापानी लड़की मायो।
2: नमस्ते
0: मायो सान, स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है NHK वर्ल्ड जापान में आके। थैंक यू।
0: आजकल आपका एक ना डांस वीडियो भारत में बहुत ही वायरल हो रहा है, बहुत लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें आपने भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी जी के साथ रजनीकांत के गाने पर बड़ा ही मजेदार डांस किया है। ऐसा करने का विचार कहाँ से आया?
2: हाँ जी, पहले से सुजुकी जी को मैं जानती थी और सुजुकी जी मुझको जानते थे क्योंकि एक मतलब इवेंट में मुलाकात हुई। लेकिन उसके बाद आजकल सुजुकी जी ट्विटर पे कुछ पानीपुरी खाते हुए या रजनीकांत के चश्मा घुमाते हुए वीडियोस डालना शुरू किया था और एम्बेसी में मेरे दोस्त भी हैं तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि साथ में वीडियोस बनाएं और ऑफ कोर्स मैंने हां कर दिया। और किसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे ये चर्चा करते हुए मुझे लगा शायद सुजुकी जी रजनीकांत जी के डांस भी नाचेंगे, मतलब
0: बहुत ही बढ़िया वीडियो है।
2: वैसे अभी JLR रजनीकांत जी के नई मूवी आई थी और जापान में मतलब छोटा सा रिलीज हुआ था। और वैसे रजनीकांत जी तो बहुत साल से जापान और भारत का एक पुल है क्योंकि जापान में बहुत सारे रजनीकांत फैंस हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि ये मतलब इंडिया जापान रिलेशनशिप के ऊपर भी इसी गाने के ऊपर डांस करना अच्छा होगा, इसलिए मैंने इसी का नाचना है।
0: बहुत बढ़िया। और देखिए YouTube पर आपके लाखों सब्सक्राइबर हैं, शायद करीब 28 लाख सब्सक्राइबर हैं।
2: हाँ जी
0: जी, और उनमें से एक प्रशंसक मैं भी हूँ आपके। Thank वीडियो you. देखकर मुझे बहुत आनंद आता है।
2: धन्यवाद।
0: बड़े बड़े मजेदार विषय पर ही नहीं पर आपके बोलने की अदा, आपकी शानदार हिंदी सुनकर बहुत ही प्रभावित हूँ मैं। तो मैं ही नहीं, भारत में आपके काफी फैंस भी होंगे जो आपकी हिंदी सुनकर चौंक जाते होंगे कि आपको इतनी बढ़िया हिंदी बोलना कहाँ से आई और कहाँ से सीखा। जरा खुलकर बताएं कि मायो की मुलाकात हिंदी से कब और कहाँ हुई।
2: जी, तो मैंने ओसाका विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ी है। मतलब मैंने जब निर्णय लिया था जब मैं हाई स्कूल में थी कि हिंदी सीखेंगे, और उसका निर्णय लेना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। लेकिन एक कारण यह है कि मेरे पिताजी अक्सर भारत जाते थे और हिमालय पर्वत में चढ़ते थे, तो वो हमेशा बोलते थे कि इंडिया बहुत मजेदार देश है, हिंदी सीखो बहुत मजा आएगा, ऐसे। वो एक कारण है। और दूसरा कारण, मैं भी विदेश या भाषा में हमेशा से रुचि रखती हूँ, तो इसलिए एक भाषा कॉलेज में सीखना अच्छा होगा ऐसा भी सोच रही थी। और वैसे इंडिया और जापान का संबंध बहुत अच्छा है, और भारत तो सब लोग जानते हैं कि बहुत तेज विकास हो रहा है, इसलिए ये सब सोच के मुझे लगा कि चलो मैं हिंदी सीखूंगी।
0: तो आपने कहा कि आपने विश्वविद्यालय में हिंदी सीखी, लेकिन देखिए किताबों में पढ़ी हुई हिंदी और आम बोलचाल की जो धारा प्रवाह हिंदी है, जिस तरह से आप वीडियो में भी बोलती हैं, शब्दों की समझ, ये सिर्फ किताबों से तो नहीं आ सकती।
2: जी,
0: आप इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल लेती हैं? इसके लिए आपने कुछ खास मेहनत की, कुछ अभ्यास किया? जरा उसके बारे में बताइए।
2: ठीक है, कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ मैं एक भारतीय रेस्टोरेंट में काम करती थी वेटरेस के रूप में, और उसी समय रेस्टोरेंट में दो भारतीय रसोई थे, और सिर्फ मैं। और उन भारतीय लोगों को जापानीज या इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती थी, इसका मतलब मुझे हिंदी बोलनी थी
0: जी।
2: और ऑर्डर लेकर कुछ बातें भी करना था, जैसे कभी कभी कस्टमर ऐसे बोलते हैं कि मेरे बच्चों को एग से एलर्जी है, इसलिए इसमें एग है कि नहीं इसको पता चल के आ जाइए। तो वो तो बहुत क्रिटिकल बात है, मतलब अच्छे से कम्युनिकेशन तो करना चाहिए। तो ऐसे मतलब मुझे हिंदी बोलनी चाहिए थी, इसलिए उसी एनवायरनमेंट में मतलब पढ़ाई तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा कारण था। और दूसरी बात ये है कि जब मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, तभी तो बहुत सारे दोस्त थे। मतलब ऐसा है कि किताब में भी हिंदी सीख सकते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ बातें करके ज्यादा अच्छे से हिंदी आ जाती है। तो अभी भी मैं सीख रही हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी हिंदी पूरी हो गई, बहुत मैं अभी भी सीख रही हूँ
0: जी। भाषा तो हमेशा ही जारी रहती है सीखना।
2: हाँ।
0: आपने कहा कि आप भारत रही, कितने साल रही?
2: स्टूडेंट के रूप में 14 महीने, एक साल से थोड़ा सा और उसके बाद भी आजकल तो 3 महीने में 1 महीने तो इंडिया में समय गुजारती हूँ, और पता नहीं कितने, कुल मिलाकर 2 साल, लगभग 2 साल से ज्यादा तो हो गए होंगे, लेकिन काउंट नहीं करती, गिनती नहीं मैं।
0: और मैंने आपके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देखा कि आपको हिंदी फिल्में बहुत पसंद है, आप हमेशा हिंदी फिल्मों पर डांस वीडियो बनाती हैं।
2: जी,
0: हिंदी फिल्में भारतीय संस्कृति समझने और आपकी हिंदी को सुधारने में कितनी सहायक हुई?
2: ऑफकोर्स बहुत सहायक तो था, पर मुझे लगता है हिंदी मूवी में कभी कभी हिंदी के अलावा भी सीख जाती हूँ, मराठी भी है, गुजराती भी है, बहुत सारी भाषाएं हैं, और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं हिंदी सीख रही हूँ या पंजाबी सीख रही हूँ है ना। तो लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बातचीत में भी भारतीय लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, ये बात है
0: कि सही बात।
2: हिंदी के अंदर में भी बहुत कुछ बोलियां भी हैं या कुछ एक्सेंट भी हैं, तो ये सब जानना तो चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए, बातें करने के लिए, इसलिए मूवी से ऐसी भाषाएं सीखना भी बहुत अच्छा था, या तो महाभारत जैसे कुछ मुश्किल मूवीज में तो बहुत शुद्ध हिंदी भी मैं सीख सकती हूँ, जो किताबों से सीखने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन मूवी में तो मजेदार है तो देखती रह सकूंगी ना। किताब तो थोड़ा थक जाती हूँ, लेकिन मूवी है तो देखती रहती हूँ, तो ऐसा भी तो हाँ बहुत सारी मदद की है।
0: तो आप ये बताइए कि आपको हिंदी फिल्में तो आपने बताया बहुत पसंद है और आप जब भी थकती नहीं है उसको देखते
2: हुए
0: बिल्कुल भी, तो आपके पसंदीदा हीरो तो मुझे पता है ऋतिक रोशन।
2: हाँ लेकिन आजकल ना आजकल मुझे रणवीर सिंह बहुत अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा,
2: तो मैं निर्णय नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कौन सा उसे अच्छा लगता है।
0: निर्देशक कौन सा अच्छे लगते हैं?
2: कौन निर्देशक?
0: फिल्म निर्देशक, डायरेक्टर?
2: डायरेक्टर तो संजय लीला भंसाली जी है।
0: क्यों?
2: क्योंकि उनकी मूवीज बहुत सुंदर है, लगता है कि हर क्षण आर्ट है। मतलब क्या बोलेंगी, बहुत सुंदर है।
0: सबसे फेवरेट उनकी फिल्म कौन सी रही आपकी? आपको कौन सी फिल्म है जो बहुत ही पसंद आई है?
2: बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं कहूंगी गोड़ियों की रासलीला रामलीला।
0: अच्छा,
2: आपने देखी है?
0: जी जी, रणवीर अच्छा। और दीपिका पादुकोण। हाँ, की
2: मैं उसमें ना एक विशेष क्या था कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच कुछ तो है। बाद में तो पता चला कि वो उसी समय डेट करने लगे और उसके बाद शादी भी हुई है, लेकिन सुना है कि उसी मूवी शूटिंग के दौरान वे लोग के बीच में कुछ तो चक्कर शुरू हुआ है।
0: तो गॉसिप देख रही थी।
2: और नहीं नहीं, वो मूवी से पता चलता है कि उन दोनों के केमिस्ट्री बहुत है, तो देखकर मुझे लगता है यार यार मुझे भी ऐसा प्यार तो करना चाहिए। और एक्टिंग भी बहुत अच्छे हैं, डायलॉग भी बहुत, मतलब वो कुछ गुजराती डायलेक्ट के साथ है, और दीपिका पादुकोण जी के बोलने का तरीका कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग औरत और कुछ कमजोर औरत दोनों इकट्ठे होके बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: और डांस भी बहुत अच्छा,
2: डांस भी बहुत अच्छा है। और उनके इश्कें रुकशियां करके एक डांस है, वो मैंने पूरा कॉपी किया था, मतलब हर कोरियोग्राफी हर कैमरा एंगल सब कॉपी करके एक वीडियो बनाया था, तो इतना मुझे पसंद है।
1: मित्रों, मायू जापान के साथ ये मुलाकात आपको कैसी लगी जरूर बताएं, आपके पत्रों का हमें इंतजार है।
0: कमाईनी जी, मायू जी भारतीय फिल्मों की खासी शौकीन हैं और इन दिनों में भारतीय सिनेमा में अपना भाग्य आजमा रही हैं। इसी कोशिश के चलते उन्होंने कुछ समय पहले लघु वीडियो श्रृंखला मोशी मोशी मुंबई बनाई, जो यूट्यूब पर उपलब्ध है। भारत और जापान के बीच मैत्री को लेकर बनी यह लघु सीरीज काफी मजेदार है।
1: अरे वाह, मैं भी इसे देखना चाहूंगी। और मित्रों, मायू जी के साथ ये मुलाकात अगले हफ्ते भी जारी रहेगी,
0: जरूर सुनिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा का यह कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। अनुमति दीजिए अपनी सखी शांगुला जैन को
1: और कामायनी सिंह को।
0: सायोनारा,
1: नमस्कार।

0: ये NHK World Japan की उर्दू सर्विस है। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज पर सुनी जा सकती हैं। इंटरनेट पर आप हमारे प्रोग्राम nhk.jp/urdu पर सुन सकते हैं।
1: जी सामिन, प्रोग्राम आपने सुना यकीनन पसंद आया होगा। कोची प्रीफेक्चर का सुनकर मुझे अपना शहर बड़ा याद आया, क्योंकि मेरा ताल्लुक है पाकिस्तान के शहर कराची से, जो कि अपने खूबसूरत समुंदर और उसके किनारे बने पिकनिक पॉइंट्स और उसके मुख्तलिफ साहिलों पर दूर तक बने हुए छोटे छोटे घर जिन्हें हर्ष कहते हैं की वजह से मशहूर है, जहाँ हम साल में एक दफा पूरा दिन गुजारने जरूर जाते थे और ये खूबसूरत यादें आज भी ताजा हैं। अम्मी हमें बचपन में तरह तरह की मछलियां खिलाती थी, क्योंकि बड़ी आसानी से जो दस्तियाब थी, और यहाँ तक के मछली वाला घर पे भी मछली दे जाता था। वहां पर एक खास साहिल समुद्र का इलाका है, जहां पर मछेरे ताजी ताजी मछलियां पकड़ कर लाते हैं, और ये इलाका मछली और दूसरे सी फूड की खरीदो फरोख्त का मरकज है। जापान के मुख्तलिफ साहिल समुद्र देख कर मुझे कुछ कुछ अपने शहर से ममासलत नजर आती है। हम अपने मुल्क में मछली फ्राई, सालन, मछली बिरयानी, यहाँ तक के झींगा पुलाव भी खाते हैं, लेकिन जापान आकर पता चला कि यहाँ तो कोई उमामी जायका भी होता है, जो कि कत्सुबुशी जैसे अज्जा में पाया जाता है, जिसे बनाने के लिए बोनीतो मछली से खूब मेहनत से होमबुशी बनाई जाती है, जो सिर्फ जापान का ही खासा है। अब तो मैं भी इताशी खूब इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन एक बात का थोड़ा अफसोस होता है कि जापान के रिवायती तरीकों को जिंदा रखने वाले माहिरीन आहिस्ता आहिस्ता नापैद होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, नौजवानों को आगे बढ़कर इन रिवायती तरीकों को सीखना चाहिए, ताकि ये नस्ल दर नस्ल चलते रहें। तो सामीन, आज के प्रोग्राम के बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इसके लिए हमारी